बार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चावल हिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रमका प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्भर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनाञ्जली प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: प्रेमों की बरसात है।
1: क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है।
0: ओ, सपने बिखरे
1: मोड़ मोड़।

0: अरमानों का जोर है।
1: दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है।
0: दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है।
1: दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है।
0: ओ लहरें डोले
2: झूम झूम के
0: साहिल का मुँह
2: झूम झूम के
0: ऐसे में क्यों हम
2: दीवाने हो जाएगा।
0: देखो मौसम
2: क्या बहार है
0: सारा आलम
2: बेकरार है
0: ऐसे में क्यों हम।

0: ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक फ्लैशबैक।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें
1: और आज 1964 की यादें समेटकर पेश कर रहा हूँ उस साल के यादगार गीतों का दूसरा हिस्सा।

इस खूबसूरत फिल्म मेरे महबूब का संगीत 2 वर्षों में बट गया था साहब, तभी इसके कई गीत छांव में रह गए थे। बस एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक 2 बार पहुंचा। सन 1963 में वो नंबर 24 पर था और 1964 में आप उसकी झलक काफी ऊपर की पायदान पर सुनने वाले हैं। बहरहाल आज मैं अपनी यादों में करवटें बदल बदल कर आपको सुनाऊंगा गीतमाला के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही अजीब सी कहानी। आप तो जानते ही हैं बहनों और भाइयों कि मेरा नाता रेडियो सिलोन से जुड़ा सन 1951 में, फिर सन 1952 में गीतमाला शुरू हुई और धूम मचाने लगी, और फिर और कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रेडियो सिलोन के लिए मैं करता रहा। 1956 में मैंने कोलंबो में रेडियो सिलोन के स्टेशन पर भी काम किया महीने भर के लिए, और यही सब करते करते बनते बनते मैंने रेडियो सिलोन को ही अपनी पहली प्रेमिका पहली महबूबा बना लिया, और मन ही मन में उसके लिए ऐसे मजेदार गाने भी गाने लगा।

अच्छा भाई 1964 की छाओ के दो गीतों में आपने नौशाद साहब की मधुर धुन भी सुन ली और दादा सचिंदे बर्मन की मजेदार तर्ज भी सुन ली। अब सुनिए बहनों और भाइयों हाल रेडियो सिलोन की उस बड़ी अजीब सी घटना का जो शुरू हुई थी 1964 के आखिर में और रंग लाई अगले साल जनवरी में। हुआ यूं बहनों और भाइयों कि सन 64 में रेडियो सिलोन की ऑल इंडिया हिंदी सर्विस का कारोबार सिर्फ दो शानदार अनाउंसर्स चलाया करते थे, गोपाल शर्मा और शिव कुमार सरोज। मगर साल के आखिर में शिव कुमार सरोज बीमार पड़ गए और इलाज के लिए बंबई लौट आए और सारी सर्विस का बोझ कई हफ्तों तक अकेले संभालते संभालते हमारे गोपाल शर्मा भी इतने थक गए कि एक सुबह उन्होंने फट से ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और कोलंबो छोड़कर बंबई लौट आए। तो फौरन रेडियो सिलोन के डायरेक्टर जनरल ने हमारे बंबई के दफ्तर में फोन किया कि यहां सब गड़बड़ है, हिंदी सर्विस खतरे में है। कुछ साल पहले अमीन सायानी यहां आए थे, वो हिंदी सर्विस का सारा काम जानते हैं, उन्हें फौरन कोलंबो भेजिए। बस तो साहब मुझे ऑर्डर मिला कि अभी इमीडिएटली सामान बांधो, शाम तक तुम्हारा वीजा और एयर टिकट आ जाएगा और कल सुबह के प्लेन से तुम फौरन पहुंचो कोलंबो, गो। तो भाई मैं तो खुशी खुशी लपटा और झपटा कि वाह वाह मिल गया मुझे दूसरा मौका रेडियो सिलोन जाने का। तो बस अगले दिन पहुंच गया मैं प्लेन में बैठकर कोलंबो और एयरपोर्ट से सीधे अपना सूटकेस थामे टैक्सी पकड़कर दौड़ा रेडियो सिलोन के स्टेशन पर। मगर वहां पहुंचकर मैं दंग रह गया बहनों भाइयों, क्योंकि वहां तो भाई सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: सॉरी बानो भाइयो, मेरी बड़ी पुरानी आदत है ना बातों से गीतों को जोड़ते जाने की। खैर, इकबाल कुरैशी की धुन से सजे हुए छाव में गूंजते हुए इस लाजवाब गीत के बारे में एक खास बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और हीरो भी वो महान इंसान थे जो पिछले कई वर्षों से फिल्मी दुनिया में होने वाले आपस के झगड़े निपटाते और उलझने सुलझाते चले आए हैं। इस महान हस्ती का नाम है श्री चंद्रशेखर, जिनसे मैं आपको गीतमाला की छाओं के किसी अगले वॉल्यूम में जल्द ही मिलवाऊंगा। अच्छा भाई, आज 1964 की वार्षिक संगीत सीढ़ी की ऊपर वाली पायदानों पर भी तो हमें कदम रखना है। देखिए पायदान नंबर 17 पर उस साल कैसे लटके झटके हो रहे थे।
2: न झटको जुल्फ से

ना ना रोना बंद, क्योंकि मेरे रेडियो सिलोन के दूसरे सफर की दास्तान अब शुरू हो रही है, सुनिए। हाँ तो भाई, जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट से सीधे रेडियो सिलोन पहुंचा ना, तो मैंने डायरेक्टर जनरल साहब से मिलकर कहा, सर मैं आ गया हूँ, अब कहिए कब मुझे माइक्रोफोन पर काम शुरू करना है। मगर डीजी साहब बड़े सीरियस होकर बोले, नो नो नो, प्रधानमंत्री साहबा का ऑर्डर है कि जो रेडियो सिलोन पर नौकरी नहीं कर रहा हो उसको डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट की परमिशन बिल्कुल मत दीजिए। तो मैं हड़बड़ाकर बोला, मगर सर आप ही ने तो मुझे अर्जेंटली बुलाया था बंबई से, तो अब मैं क्या करूं, वापस बॉम्बे लौट जाऊं? तो वो बोले, नहीं नहीं, बस तुम माइक्रोफोन पर खुद नहीं बोलना, बल्कि हमने जो दो तीन नए टेम्पररी अनाउंसर्स को इस काम के लिए चुना है, कोरे लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, उनके पास तुम बैठना। जब एक गीत बज रहा हो तो उसके बाद वाली अनाउंसमेंट तुम टेम्पररी अनाउंसर को लिखाओ, रिहर्स करवाओ और गीत खत्म होने पर उसी से बुलवाओ। तो मैं बोला, मगर सर मुझे अपने वीकली हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की रिकॉर्डिंग बॉम्बे में करके लाने का तो टाइम ही नहीं दिया था आपने, उसमें तो मुझे ही बोलना पड़ेगा भाई। तो वो बोले, ओके ओके, तो तुम उसे गीतमाला को ब्रॉडकास्ट से दो रोज पहले किसी खाली स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाओ और उसमें गाने भी मिक्स करवाओ और बुधवार की रात उसी टेप को ब्रॉडकास्ट करवाओ। तो साहब यही मुझे वहां करना पड़ा, उसी तरह जैसे आज भी मैं अपने स्टूडियो में अपने रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन की मदद से गीतमाला की छाओ में का वॉल्यूम नंबर 22 रिकॉर्ड करवा रहा हूं, और अब हाथ के इशारे से उन्हें समझा रहा हूं कि बेटा लगाओ 1964 के गीत नंबर 14 की झलक।

नंबर 12 पर गूंजा था गीत उस फिल्म का जिसका यादगार प्रीव्यू मैंने देखा था आरके स्टूडियोज में, और वो यादगार इसलिए था कि मुझे वहां उस फिल्म की रेडियो पब्लिसिटी के लिए बुलाया गया था और मैंने वो शो देखा फिल्म के दो जबरदस्त सितारों राज कपूर और राजेंद्र कुमार के बीच बैठकर, दो गजब के लोग जिनका मैं फैन भी था और छोटा मोटा दोस्त भी, मगर अफसोस के अब तो

0: रहा।
1: ओहो साहब, संगम के बिछड़े हुए सितारों के गम ने मुझे फिर पहुंचा दिया उसी जमाने में हुए मेरे रेडियो सिलोन के सफर के माहौल में, जब मैं माइक्रोफोन के पास बैठ तो सकता था मगर मुझे माइक्रोफोन पर बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरे दोस्त विजय किशोर दुबे तो तब तक रेडियो सिलोन की नौकरी छोड़ ही चुके थे, लेकिन मेरे एक और जबरदस्त दोस्त और बड़े पॉपुलर अनाउंसर ग्रेग, जो रेडियो सिलोन की इंग्लिश कमर्शियल सर्विस पर गीतमाला के इंग्लिश वर्जन यानी हिट परेड पेश किया करते थे, वो वहां थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन अकेले में बताया कि संभल के रहना, यहाँ आजकल पॉलिटिक्स की बड़ी गड़बड़ें चल रही हैं और रेडियो सिलोन पर एक छोटी सी गड़बड़ हो भी गई थी जिसकी वजह से रेडियो सिलोन भी बंदिशों की लपेट में आ गया है। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहबा ने देश के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करवाया था जिसके पहले और बाद में थोड़े से संजीदा सोबर म्यूजिक बजाने का ऑर्डर था, मगर गलती से जरा सा गमगीन जरा सा सैड सा म्यूजिक बज गया। भाई वैसे तो इससे कोई फर्क न पड़ता मगर ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े अखबार ने शरारत कर दी। अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि देखा रेडियो सिलोन ने भी कैसे मैडम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से पहले और बाद में फ्यूनरल मार्च बजा दिया यानी मातम का शोक संगीत बजा दिया और साहब धूम मच गई। कमर्शियल सर्विस के डायरेक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया गया और सारे रेडियो स्टेशन पर भी बड़ी तकलीफें टूट पड़ी साहब।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। बहन और भाइयों, और भी कई गड़बड़े हुई मेरे साथ रेडियो सिलोन में उन दिनों, लेकिन अभी तो मुझसे गीतमाला की छाव कह रही है कि ए भाई चुप कर और मोहम्मद रफी जैसे किसी सुरीले इंसान को बोलने दे। तो लीजिए भाई, सुनिए।

0: मैंने ऐसा मर्द दोस्त नहीं पाया, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जिसके साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है, शमी उसके लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन शमी में एक बहुत बड़ी खराबी है, और वो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देना। वो खाएगा तो बहुत खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, काम करेगा तो बहुत करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी एक कमज़ोरी भी है, और वो है उसकी दवाइयों का बक्सा। जहाँ भी जाएगा उसे अपने साथ ले जाएगा। सुबह से शाम तक वो 15-20 तरह के टैबलेट्स खाता ही रहता है। मान लीजिए शूटिंग के दौरान में किसी को मामूली सी चोट लग गई, फौरन शमी साहब की दवाइयों का बक्सा आ जाएगा, और उसमें से वो तरह तरह की रंगीन गोलियां निकाल कर उस आदमी को खिला देंगे, चाहे उनसे कुछ फ़ायदा हो या ना हो। शमी में एक और बुराई है, और वो है फाइटिंग सीन्स में खुद काम करना। अक्सर फाइटिंग सीन्स के लिए हम लोग डुप्लीकेट्स रखते हैं, ताकि ख़तरे का काम या मुश्किल काम वो लोग करें। लेकिन शमी साहब नहीं मानेंगे, वो हर काम खुद करेंगे, और इस तरह से कभी कांच से अपना हाथ काट लेंगे, या फिर कभी चलती जीप से कूदकर अपना पैर तोड़ लेंगे।
1: दोस्तों, शम्मी कपूर की जवानी की उस कांच तोड़ अदा का सबूत मैंने भी देखा था। श्रीनगर के एक बड़े महंगे महल जैसे होटल के बड़े दरवाजे का कांच, जिसे शम्मी ने ताव में आकर घूंसा मारकर चकनाचूर कर दिया था। इन्हीं हरकतों की वजह से ही तो शम्मी को टाइटल दिया गया था बागी अदाकार। वैसे फिल्मों में एक बागी संगीतकार भी तो हुआ करते थे, मदन मोहन। उनकी धूमधाम का जिक्र बस अभी आएगा बहनों भाइयों, मगर पहले उनकी नाजुक भावुकता से उभरी हुई एक धुन सुन लीजिए, जो तलत महमूद के गाए हुए सबसे अमर गीतों में शामिल होते हुए भी सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई।

0: अरे
1: बात तूल पकड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी।
0: अरे बाप,
1: उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे। मैंने कहा देखो ओम, एक लफ्ज तुमने कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। कहने लगे कि नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी, लेकिन फिर भी कहूंगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा।
2: अच्छा साहब, मदन मोहन ही के स्तर के एक और लाजवाब संगीतकार थे रोशन, मगर रोशन की आदतें मदन से बिल्कुल अलग थीं। मदन भैया का चाल चलन अगर फौजी था तो रोशन भाई हुआ करते थे हंसमुख, खामोश, भावुक, मिलनसार, बिल्कुल उनके एक गीत की तरह, जिसका मुखड़ा अंतरा उन्होंने अपने घर में खुद अपनी ही आवाज में शायद कुछ बीमारी की हालत में गाकर रिकॉर्ड करवाया था।

याद आया आपको ये किस फिल्म का गीत था? नई उम्र की नई फसल और सन 64 की छांव का अगला गीत मैंने उसी फिल्म से चुना है आपके लिए।

नींदें तो मेरी गायब हो गई थीं मेरे उस रेडियो सैलून के दूसरे सफर में। शुक्र है मेरी झुंझलाहटें कुछ कम करने के लिए शिव कुमार सरोज अपनी तबीयत ठीक ठाक करके लौट आए थे कोलंबो, तो मुझे एक दोपहर कुछ घंटों की छुट्टी मिल गई और मैं कोलंबो से कुछ दूर उस जगह जा पाया जहां मैंने सुना था कि हाथियों का बड़ा सुंदर डांस होता है। तो मैंने जाकर देखा वो डांस और अगले दिन स्टूडियो जाकर मैंने आधे घंटे का एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाथियों के उस नाच पर। मगर एक दिन बाद जब वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसे शिव कुमार सरोज ने सुना और वो दौड़ते हुए आगे मेरे पास और बोले, अमीन भाई ये आपने क्या कर दिया, हाथी तो निशान है, सिंबल है यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी का और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि रेडियो सैलून पर हाथी का कोई गीत बजना ही नहीं चाहिए बल्कि हाथी का नाम भी कहीं नहीं आना चाहिए। अब तो अमीन भाई आप पर कड़ी कार्रवाई चल सकती है बच्चिए। भाई मैं तो एकदम डर गया साहब, मगर जब दो रोज तक मुझे गवर्नमेंट का कोई बुलावा नहीं आया ना तो मैंने सोचा कि चलो वाकई बच गए। शायद मेरे प्यारे शहर कोलंबो के लोगों को ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि हिंदी में एलिफेंट को हाथी कहते हैं। मगर साहब अगले दिन जब मैं रेडियो सैलून की कमर्शियल सर्विस के स्टूडियो की तरफ जाने लगा ना तो भाई मेरे छक्के छूट गए। क्यों और कैसे ये मैं अभी कुछ मिनट बाद आपको बताऊंगा, बड़ी मजेदार कहानी है। 1964 की छाओं में छुपे दो और गीतों और सालाना संगीत सीढ़ी की कुछ झलकों के बाद बताऊंगा। पहले सुनिए उस साल के छुपे रुस्तम संगीतकार जीएस कोहली की गजब की धुन जिसे लोकप्रियता की धूप

थी जो हेमंत कुमार ने अपनी बंगाली फिल्म नीलाकाशेर नीचे में दी थी 1959 में। अपनी लाजवाब बंगाली धुनों को बाद में हिंदी फिल्मों में ढालना ये हेमंताई नहीं सचिन देव बर्मन साहब भी अक्सर किया करते थे। बहरहाल ओ नोदी रे का हिंदी वर्जन आया था 1964 की फिल्म कोहरा में, आप तो जानते ही है ना, और वही है आज का अगला छाओं में छुपा हुआ गीत।

ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इस भजन में इस बात को बड़ी भली भांति समझाया गया है। सुख चाहे और

ये संसार नश्वर है, जीवन के सारे सुख धन जमीन जायदाद सभी नश्वर हैं। इतना ही नहीं, ये मानव देह भी नश्वर है। अज्ञानवश हम इन्हीं में सुखों को ढूंढते रहते हैं। सच्चा सुख ईश्वर प्रेम में है और सत्कर्मों में है, जो नश्वर नहीं है। क्यों ना इस जीवन को सत्कर्मों के द्वारा सफल बनाएं।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ टेलरिङ।
3: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।